0: ये रान थेम खसे शे मचो री शंग के खर कोस ने जे जे क्याला मा तोस लवचिंग मिला लवचिंग फोक्सम कोशी खरसु गरेस न लवचिंग फोक्सम के लवचिंग की मिट्रुप सु गोशी
1: तायुशो ये पुली शाला फोक्सम के जवा दिन जे जंगमे

0: ले देसु अच्छा अच्छा शामी मां की गेन छि रिदा थेंगवा गा लोप्स नेम बक छै के गु मेबा अच्छा रा सुसु बु लोप्स या गु गेम तो खन छ छे बरे थरी गा लो ले ने अच्छा संग लीदा संग ले मिए दंग मिन दो
1: ताय खर यु बा लो दिगे दे दे बा दे बरो ता क्यों मे लंग की ये रान छंग को छे ना तां दंग आ ली शान ले सुंग की
0: सुसु बु को ले सुंग दु गे
1: म सुन पियर बे ये निन दा दुस लुंग दिन गे गे छे ने ये दुन ल छिक छे तं तो गे ल छिक छिक रे ये शेव सांग म अम जो जे ल हवा दंग छि ये या ख से शेव ने ली दा शंग दा ली शान छि बु रे
0: अच्छा रान ली दा शंग गम मे जा ली शान ल ली दा शंग दा जाओ ये छे यु बे शु गो अच्छा रान थों दु यो मा छि Tsidu mebe mini ka chebi na. Ka che debi shirayo re. Aja randa li da sheng. Tesum che che de. Jubu tiya mebe gubu de. Nye che na. Che chan gug re. Aja rai. Tsua sab chu gozu. Aja randa da dinja chab tun du. Ma gyub shiragi ge. Nye ma kini tsu jingma ju ne yong yu. Nye san ba. Li xiang yu na. Kira ni kili kili le zidung liig zi samchu. Yine nye no xia. Di gi nin zi na le. Bu pa me zidung gi nin chu zi. Zama xibe nin zi na. Bu dok zi chab zi. Bu chung du ne kuyo din zi na luen bi na. Cham yu ma dan za. So so jin zi qi xing ma zi la. Mi le ga xing ma zi. 理想一姐，今日的个作业都没写完，第六道题，理想出来做做起个的，阿姐，阿姐，咱开始李大生我那个没呢，他拆学，一年不过自动过的。